चीज है कि इसकी टिकटें इतने जल्दी बिकती है कि पलक झपकते ही हाउसफुल हो जाता है। तो भाई अगर आप भी अपने बच्चों को परिवार को ये जादुई लाइट्स दिखाना चाहते हैं तो कैलेंडर में 15 अक्टूबर की तारीख मार कर लीजिए और अलार्म लगा लीजिए। चलिए खुशियों की इस ट्रेन में अपनी सिकट की टिकट बुक करने के लिए तैयार हो जाइए एंड सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय करिएगा ये अगला गाना, क्योंकि ये अगला गाना खास मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ। रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। और एक बात, कैसे हो आप? खुश तो हो ना? खुश रहिए, अच्छा लगता है।

निर्वाण नाइट्स और टेक लवर्स के लिए ब्रूज प्लस बाइट्स की महफिल। जी हाँ, अब एक खबर हमारे आरटीपी और टेक वर्ल्ड के दोस्तों के लिए। अगर आप भी सॉफ्टवेयर कोडिंग या एआई की दुनिया से जुड़े हैं और नए लोगों से नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो इस गुरुवार यानी 8 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे एक बहुत ही कूल इवेंट होने जा रहा है। नॉर्थ कैरोलिना का टेक एसोसिएशन दैट इज एनसी टेक रैली के पेंडो हेडक्वार्टर में ब्रूज प्लस बाइट्स नाम का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क इवेंट होस्ट कर रहा है। यहाँ कोई बोरिंग फॉर्मल मीटिंग नहीं होगी, बल्कि आराम से चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ आप ट्रायंगल के बड़े बड़े टेक दिग्गजों को मिल सकते हैं और नए स्टार्टअप्स फाउंडर से मिल सकते हैं। तो भाई, अपने बिजनेस के कार्ड्स तैयार रखिए, अपना लैपटॉप बंद कीजिए और गुरुवार की शाम पेंडो पहुंच जाइए। क्या पता आपकी अगली बड़ी नौकरी या बिजनेस पार्टनर आपको।

अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबका मूड बनाती है, यानी हमारे ट्रायंगल का मौसम। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू होते ही जो गर्मी हमें परेशान कर रही थी, अब वो धीरे धीरे विदा लेने लगी है और हल्की हल्की गुलाबी ठंडक ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आसमान में प्यारे प्यारे बादल है और ठंडी हवाएं चल रही है। ये मौसम घर में बैठने का बिल्कुल नहीं है। आलस को छोड़ो और इस वीकेंड पर अपनी बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए, या फिर दरम और चाय दिल के खूबसूरत पार्क में जाकर वॉक कीजिए। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिन घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस मौसम का मजा उड़ाइए और सुनते रहिएगा रेडियो नायरा। खुश रहिए और रेडियो नायरा को सुनते रहिए। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्मला नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, यानी बॉलीवुड की खबरों के बारे में जानने का। तो अरे भाई, 2 अक्टूबर की तारीख तो आपको याद ही होगी ना, क्या हुआ था, पंजी गए थे, देन ये किया था, वो किया था। लेकिन जब विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ पंजी गया था, जी हाँ, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन, इस बार कंक्लूजन है ऐसा कह रहे हैं, सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। और भाई साहब, इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर सच में गदर मचा दिया है। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर यानी सिर्फ 3 दिनों में इंडिया में 176 करोड़ रुपए का ताबड़तोब कलेक्शन कर डाला है। थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है और लोग कह रहे हैं कि इस बार का सस्पेंस तो अलग ही है। मतलब क्या एक्चुअल में विजय सालगांवकर और अपने फैमिली को सेव कर पाएगा?

0: मतलब ऑफ कोर्स विजय सालगांवकर अपनी फैमिली को सेव कर पाएगा या नहीं, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि फर्स्ट टाइम लाइक ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड में रीमेक ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत लोग हिंदी वर्जन दृश्यम 3 का काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एंड 176 करोड़ रुपए का ताबड़तोब कलेक्शन तो कर ही डाला है, थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है और लोग कह रहे हैं कि ये तो अलग लेवल की फिल्म है। अगर आपने अभी तक विजय सालगांवकर की ये नई चालाकी नहीं देखी तो भाई इस वीकेंड का टिकट अभी से बुक कर लो, वरना बाद में सिर्फ हाउसफुल का बोर्ड ही देखने मिलेगा। तो जाइए और क्या होता है मूवी ये देखिए, एंड आपके जेन्युइन रिव्यू भी मेरे साथ शेयर कीजिए। बने रहिएगा रेडियो द्वारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: हॅलो, हाय, कसं काय? आप सुन रहे हैं रेडिओ नारा पंडिरबंधा नाईट्स दृश्यम वन, जो मैंने देखी थी. मुझे याद है कि मैंने देखने के बाद इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट यार. मतलब दृश्यम वन में जो सस्पेंस रखा था अजय देवगन, श्रिया सरन और उनकी दो बच्चियां, क्या लाजवाब एक्टिंग थी तब्बू. एंड बहुत अच्छी एक्टिंग थी यार. एंड मतलब वो टाइम में तो ये काफ़ी लाइक अजय देवगन को इस अवतार में देखना, परफेक्टली फैमिली मैन, और उसके बाद इज लाइक फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. देन जो लोकल टच था, केबल ऑपरेटर एंड ऑल दैट थिंग्स. उसके बाद दृश्यम सेकंड में जैसे वो अमीर बन जाते हैं, उनका मल्टीप्लेक्स वो खोल देते हैं मेहनत करके, एंड सारी चीज़ें लाइक सब कुछ होने के बाद भी विजय सालगांवकर पकड़े नहीं जाते हैं. तो दृश्यम थ्री में यही देखने का मजा रहेगा कि क्या होता है. मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और जैसे मुझे वक्त मिलता है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वॉच इट. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित वन नाइट्स.
1: पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल.

0: कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन।
2: बाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, थोड़ा आगे बाएं के, बाएं के सीधा जाके दाएं के, दाएं के बाएं के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

अभय खामोश अगली खबर है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया धमाका। दोस्तों, शादी के बाद रियल लाइफ कपल्स को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना फैंस के

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडा नाइट। दूसरी खबर, आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की जोड़ी फिर करेंगी कमाल। लो भाई, बॉलीवुड की क्वीन आलिया भट्ट इन दिनों हर तरफ छाई हुई है। उनकी एक्शन पैक्ड फिल्म अल्फा ने तो थिएटर्स में धमाल मचाया ही था, और अब वो संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की तैयारी में बिजी है। लव एंड वॉर का एक रणवीर कपूर का जो पोस्टर है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें उन्होंने मस्टैश रखी। ही इज लुकिंग टू डैशिंग इन दैट। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों से एक और बहुत बड़ी उड़ती खबर आ रही है। चर्चा है कि भंसाली साहब अपनी बरसों पुराने ठंडे बस्ती की पड़ी फिल्म इंशाअल्लाह को आलिया भट्ट के साथ दोबारा शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले इस फिल्म में सलमान खान होने वाले थे, पर अब भंसाली इस स्क्रिप्ट पर नए सिरे से काम कर रहे हैं। भंसाली का ये ग्रैंड विजन और आलिया की बेमिसाल एक्टिंग, जब ये दोनों मिलते हैं तो पर्दे पर जादू होना पक्का है। देखते हैं इस बार क्या नया कमाल का होता है। बने रहिएगा रेडियो नारा पर।

सेचिंग किया क्या? आप सुन रहे रेडियो तारा पर निर्मला नाइट्स थलाइवा रजनीकांत के जेदर टू का ट्रेलर आउट सोशल मीडिया पर सुलामी। और रजनीकांत के बारे में क्या बताऊं मैं यार, मैं मतलब क्या ही कहूँ कि जिस खबर ने आज इंटरनेट पर सचमुच की सुनामी ला के रखी है, हम सबके पसंदीदा और सिनेमा के एकदम लेजेंड लेजेंड लेजेंड थलाइवा रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आज शाम को रिलीज हो रहा है। सन पिक्चर्स ने जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट की, फैंस क्रेजी हो गए हैं। सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट के फैंस भी रजनी सर के इस आइकॉनिक स्वैग और एक्शन को दोबारा देखने के लिए तैयार है, बेताब है, एक्साइटेड है। अभी पहले पार्ट में जो तबाही मचा थी, ट्रेलर देखकर लग रहा है कि पार्ट 2 उससे बहुत ज़्यादा आगे होने वाला है। तो बॉस YouTube खोलिए, वॉल्यूम फुल कीजिए और थलाइवा के इस महा धमाके का मजा लीजिए। माइंड इट, मजा आएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्मल नाइट्स एंड मैं यही कह रहा था कि यार अलग अलग जगहों पे जाकर लोकल फूड जो टेस्ट करते हैं ना वो अलग लेवल का होता है, होना भी चाहिए। इट्स लाइक हर जगहों का अपना अपना एक ट्रेडिशनल फूड होता है, उसे टेस्ट करने का मज़ा कुछ अलग ही है। मुझे तो काफ़ी पसंद है एंड क्या ही मज़ा आता है यार। ट्रैवलिंग तो लाइफ में होनी ही चाहिए, लाइक एक्साइटमेंट जिससे बरकरार रहती है। अगेन 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब वक्त हो चुका है डिनर का, अपने लव वंस के साथ डिनर को एंजॉय कीजिएगा, अच्छा अच्छा डिस्कशन कीजिएगा, नए नए प्लान्स बनाइएगा एंड हाँ इस सुहावने मौसम में भूलना ना भूलिएगा एंड सुनना भी ना भूलिएगा रेडियो नायरा। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर एप्पल प्ले स्टोर से, कुछ भी नहीं करना, यू नीड टू सिंपली टाइप रेडियो नायरा, यू विल गेट एन ऐप एंड उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेएस के प्यार भरे गाने। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।

हेलो हाय, कैसे काय आप सुन रहे हैं रेडियो नारा। इसमें यही कह रहा था, महीना जो है अक्टूबर का है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, गुलाबी ठंडी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मौसम में घर पे ना बैठिएगा जनाब, थोड़ा बाहर निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ द ओनली थिंग जो बहुत चीज़ें सिखाती है। और अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग जगहों के फूड इन्जॉय करना, टेस्ट करना, इट्स माई पर्सनल हॉबी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग से हम सीखते हैं वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का फूड कैसा है, एंड वहाँ पर कैसी चीज़ें चलती है। तो नथिंग इज़ लाइक दैट, इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहिए, थोड़ी एनर्जी लाइए एंड जस्ट एक्सप्लोर कीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। कैसे चल रही है आपकी शाम? अब वक्त हो चुका है डिनर का, आपके लवर्स के साथ एंजॉय कीजिए, डिनर कीजिए, अच्छा अच्छा डिस्कस कीजिए और फटाफट फटाफट फटाफट प्लान बनाइए घूमने के। बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: जान जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना,
1: ये देख
0: ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
3: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।

नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

ಸುದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ನಾರ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

बाहर शोर बहुत है, पर दिल में एक सुकून चाहिए। अपनी ही मंजिल का रास्ता अब मालूम चाहिए। मत डरो आने वाली मुश्किलों से दोस्तों, हर सुबह बस जीतने का जुनून चाहिए, और वो जुनून मैं दूंगी आपको। जुनून होना चाहिए, बाकी सब तो संभाल ही लेंगे। तो अपना फेवरेट कप उठाइए और वॉल्यूम फुल करिए, क्योंकि आ चुकी है रेडियो नायरा पे अमृता, और आपके दिन को बहुत ही खुशनुमा और खुश मिजाज बनाने के लिए ऑफ कोर्स हम करेंगे काफी सारी बातें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत ना इस आने वाले ट्रैक के साथ करें, विच इज गोइंग टू बी योर फेवरेट वेरी सून।

0: Someone once told me ki only the people who care about you can hear you when you are quiet. And that hit me so hard. Radio Naira pe aap sun rahe hain awaaz Amrita ki, and right now I'm telling you about this fact of life ki sach mein jab bhi aap kisi ek aise insaan ke saath hote hain jo aapki khamoshi ko bhi padh le to mujhe lagta hai ki aap sahi insaan ke saath hote hain. वैसे ये खामोशी पढ़ने वाली बात आप अपने ज़िंदगी में नोटिस कर चुके होंगे, जैसे आपकी अपनी मम्मी, आपके अपने पेरेंट्स, भाई बहन, जो आपके खामोश हो जाने पे आपसे ज़रूर पूछते हैं कि बेटा कुछ हुआ है क्या. लाइक दिस मॉर्निंग, अभी मैं अपसेट भी नहीं थी, आई गेस मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे और मैं चुप थी, और मम्मी ने कहा कि कुछ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या. एंड आई वॉज लाइक कि यार, मतलब मम्मी खामोशी तो पढ़ लेती है, ये बात तो है. इसी तरीके से ना अपना पार्टनर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो खामोशी को पढ़ ले, क्योंकि शोर में कई बार बातें रह जाती है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA. टिल दैट चलिए सुनते हैं आने वाला गाना.
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड.

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

वेलकम बैक टू रेडियो नायरा एंड यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट होस्ट अमृता। सोशल मीडिया पे रील्स की दुनिया में और बॉक्स ऑफिस के पर्दे पर कहीं गॉसिप्स बन रही है तो कहीं रिकॉर्ड टूट रहे हैं बहुत सारे नए, चाहे वो अजय देवगन की अगली चाल की बातें हो या फिर हमारे पुराने स्टार्स का नया डिजिटल स्वैग। हम रखते हैं आपको हर खबर से खबरदार, और ये सारी बातें सुनने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, सिर्फ आना यहाँ पर यानी रेडियो नायरा पे ऑफ कोर्स। और अमृता की बातें सुनिए सुबह सुबह। और मैं आपको सब सच बताऊं, इतनी सारी बातें बॉलीवुड में हो चुकी है ना कि सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी भूल भुलैया शायद ये पूरा बॉलीवुड ही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं जीनत अमान इफेक्ट के बारे में, सबसे पहले मुझे आप बताइए, डू यू लाइक जीनत अमान और नॉट? क्योंकि मुझे तो देखो बहुत ज्यादा पसंद है। यू कैन टेल मी ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA। चल दैट, चलिए सुनते हैं आने वाला गाना। आई कैच यू ऑन द

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सदियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोग।

Okay, so welcome back to Radio Nara and you're listening to your host Amrita. और मैं आपको बताऊं Zenith Aman effect के बारे में, which is going so trending and viral on Instagram, even यहाँ पर भी, क्योंकि Zenith Aman is that one actress जो Gen Z millennials सबकी favorite बन चुकी है. Gen Z की ऐसे क्योंकि वो Instagram पे अपने witty post and captions की वजह से काफी ज्यादा viral हो रही है. अगर आपने नहीं देखे तो I'll recommend you कि आप जरूर जाके देखें. और एक आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ विच इज़ द स्केरीएस्ट हॉरर फिल्म, और इसका ट्रेलर आ चुका है विच इज़ गोइंग टू रिलीज ऑन October 23rd. और आपको बड़ा मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में, बिकॉज यू नो इट इज़ इंडियाज़ स्केरीएस्ट फिल्म, ऐसा कहा जा रहा है. अब ये कितनी स्केरी होगी वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये ट्रेलर जरूर देख करके आइए एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है. फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जस्ट गेट इन लाइन अगर आपको जानना है अपने दिन के बारे में कि आखिर आज आपके होरोस्कोप्स में लिखा क्या है. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ बने रहिए इस आने वाले गाने के बारे में.

You're listening to Radio Nara and this is your host Amrita. Gaane ke baad aapka bahut bahut swagat hai yahan par. And let's talk about the horoscopes, which is Radio Nara Horoscopes Rapid Fire. Aur baari hai Aries ki, yani mesh rashi walon ki. Aap logon ke liye aaj ka vibe jo hai na, wo kaafi zyada clear thinking and boundaries banane wala hai. And mesh rashi wale इमोशंस में बहकर कोई ऐसा फैसला मत लीजिए कि आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाए. फैक्ट्स पर जरूर ध्यान देना है और घर परिवार की जिम्मेदारियों को थोड़ी सी प्रायोरिटी भी देनी है. इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी चौरस के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक. कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

हाँ जी, रेडियो रारा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट अमृता ऑफ कोर्स. और आपको बताने वाली हूँ मैं वृषभ राशि यानी चौरस के बारे में. ऑल द चौरियंस जस्ट कम इन लाइन. आज की आपकी जो वाइब है वो फुल ऑन एनर्जी और नए एक्शंस के साथ होने वाली है. एंड यू नो आज आपका जोश काफी हाई रहेगा. टीम वर्क और क्विक इंटरैक्शन से आप अपने गोल्स को जल्दी पा लेंगे. सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिग तो आपको थोड़ा सा ग्रुप वर्क में भी काम करना पड़ेगा और टीम वर्क से आपको सपोर्ट ही मिलता है. तो आइंदा से आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी काम आप अकेले ना करें. सपोर्ट आपके दोस्तों का अगर रहेगा तो काम जल्दी भी होगा और अच्छे से भी. इसके साथ साथ अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनाइज की. सो ऑल द जेमिनाइज जस्ट कम इन लाइन. मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक.

0: हर किस झुकेगा
1: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
2: द मॉरिसवेल चेंबर ऑफ कॉमर्स इनवाइट्स यू टू द नॉलेजेबल नेटवर्क ऑफ विमेन द पावर ऑफ वॉइस ऑन वेंसडे अक्टूबर 22nd फ्रॉम 11:30 AM टू 1 PM। This inspiring interactive session will help you communicate with confidence, find your voice, and show up with greater clarity and purpose. Register today at morrisvillechamber.org.
3: What Media partner, Radio Naira. Restoring your inner balance. Stress, emotional heaviness, low energy. Sometimes your body and mind are simply asking you to pause, reset, and recharge. Discover Pranic Healing, a practical non-touch practice that works with life force to support greater calm, clarity, energy, and well-being. Experience it first at a free Twin Hearts meditation and healing session every Thursday at 7 PM. Ready to go deeper? Join the beginner-friendly Level 1 Basic Pranic Healing class, September 26th and 27th in Kerry, or October 3rd and 4th in the Charlotte area. Tuition is $495. Pranic Healing complements professional care. Register at pranichealingnorthcarolina.com or call 252-410-2268. Pranic Healing North Carolina. Restore your energy. Restore your balance.
4: Hum Sab Diwali is bringing alive the Festival of Lights. And you don't want to miss it. Get ready for an unforgettable celebration of Indian culture featuring spectacular performances, delicious food, exciting shopping, family fun, and so much more. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.
5: Achas, you know, you're coming for Tanishq's Rally Trunk show, na?
6: Kab?
5: Arey, I told you last week. It's on October 17th and 18th at Courtyard by Marriott Raleigh Cary, 1008 Parkside Main Street, Cary, North Carolina 27519, from 11 AM to 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
6: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
5: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
7: हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में एंड दिस इज टाइम फॉर जेमिनाइज। थोड़ा पॉज लेने और पुरानी प्लानिंग रिव्यू करने का समय आ चुका है क्योंकि सारे मिथुन राशि वाले चीजों को फोर्स बिल्कुल मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने ही फाइनेंस और अकाउंट की प्लानिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये टाइम है जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करने का जब टाइम आएगा तब भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन दिस टाइम आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, हर चीजें देखने की जरूरत है, उसके बाद अपने डिसीजंस लेने की जरूरत है। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टुडे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चल पाए और इसके साथ ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड आफ्टर दिस मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसेरियंस के बारे में, यानी ऑल द कर्क राशि वाले, तो प्लीज आप जरूर कहीं जाइएगा मत और यहीं पर बने रहिएगा विद रेडियो नायरा एंड आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड।

0: वेलकम बैक टू रेडियो नायरा होरोस्कोप रैपिड फायर एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. चलिए बात करते हैं ऑल द कैंसेरियंस की, यानी कर्क राशि. सो फॉर टुडे आपके लिए बताऊं तो एक गुड न्यूज मिलने वाली है कर्क राशि वालों को. आपको मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी उसकी चीज के लिए, एंड आपकी मेहनत की काफी तारीफें भी की जाएंगी. और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई जरूर रखिएगा, सक्सेस आपके पास आ रही है. एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू नो एंड रिमेम्बर कि सक्सेस आपके पास आ रही है. सो फटाफट से टाइट अप हो जाइए एंड गो फॉर इट. और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी लियोस के बारे में, यानी सिंह राशि. जस्ट गेट इन लाइन.
1: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
3: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online, or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं होरोस्कोप्स की बातें, और यहाँ पर अब बारी है लियोज यानी सिंह राशि की। सो आप लोगों के लिए मैं बताऊँ, लीडरशिप और ग्रैंड डिसीजन लेने का दिन है और काफी अच्छा दिन रहेगा ये। सिंह राशि वालों के लिए लीडर बनने का समय आ चुका है। ऑफिस हो या घर, आपके डिसीजंस काफी इम्पैक्ट डालेंगे। बस जिम्मेदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू एनीथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, जस्ट गो फॉर इट। दिन काफी ज्यादा लकी है। एंड ऑफ कोर्स आपको इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप डिसीजन क्या लेते हैं और किसके लिए। सो इसी के साथ अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गोस की, बताऊंगी आपको लेकिन आफ्टर दिस सब कमेंट ट्रैक।

हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वर्गोस। डिसिप्लिन और पुराने एक्सपीरियंस से सीखने का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस जरूर मिलेगी। वैसे मैं सच बताऊं तो वर्गोस के लिए ना ये काफी अच्छी बात है कि वो अपना काम जरूर करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए और सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा उन चीज़ों पे जरूर ध्यान रखिए। अब बताऊंगी आपको लीब्रास यानी तुला राशि के बारे में, तो सुनना मत भूलिएगा आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक।

हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वर्गोस। डिसिप्लिन और पुराने एक्सपीरियंस से सीखने का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस जरूर मिलेगी। वैसे मैं सच बताऊं तो वर्गोस के लिए ना ये काफी अच्छी बात है कि वो अपना काम जरूर करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए और सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा उन चीज़ों पे जरूर ध्यान रखिए। अब बताऊंगी आपको लीब्रास यानी तुला राशि के बारे में, तो सुनना मत भूलिएगा आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक।

हाँ जी जानेमन, तो स्वागत है आपका रेडियो नैरो पे एंड दिस इज योर होस्ट अमृता एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि वाले। ओवरथिंकिंग से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए बातें कह रही है। सो वृश्चिक राशि, उन सभी चीजों के लिए परेशान मत होइए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ टू ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो एक चीज को जिसको आप तवज्जो दे रहे हैं वो तो हो जाएगी, लेकिन जो पीछे छूट जाता है उसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ओवरथिंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप उस पर ध्यान ना दें, ओवरथिंक ना करें। यू कैन डू मेडिटेशन या फिर आप बुक रीड कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ टू अवॉइड दीज थिंग्स। एंड इसके साथ साथ हम करेंगे काफी सारी बातें सैजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में।

रैपिड फायर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस इज योर होस्ट अमृता एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सैजिटेरियस। जी हाँ, धनु राशि वाले, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और एक्साइटमेंट, दिस इज गोइंग टू बी अ वाइब फॉर योर डे। एंड धनु राशि के सितारे कह रहे हैं आप अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को खुलकर यूज करेंगे आज, और नए रास्ते भी खुल रहे हैं, बस बड़े पिक्चर पर फोकस रखने की जरूरत है। एंड इफ यू आर ड्रीमिंग बिग, जस्ट गो फॉर इट। सो इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कैप्रिकॉर्न्स के भी बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू कमिंग फॉर तनिष्क रैली ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Tanish, a Tata product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

on Radio Nayara and this is your host Amrita. Let's talk about Capricorns क्योंकि हम बात कर रहे थे horoscopes की and this time for Capricorns future planning और smart moves का दिन है. मकर राशि वालों के लिए आज का दिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफी बेस्ट रहेगा. क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त आप अपने चार्म और समझदारी का भी यूज करेंगे, विच इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. सो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू मीटिंग, जस्ट गो फॉर इट. आपका दिन काफी अच्छा रहेगा. कीप योर हेड अप एंड स्टैंडर्ड हाई. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज्यादा बूस्ट होता है. और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट राशि यानी एक्वेरियस के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, वैसे इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन है चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

हाँ जी जानेमन, स्वागत है आपका रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी अक्वेरियस। जी हाँ, कुंभ राशि वाले कंसिस्टेंट एंड एफर्ट और हार्ड वर्क, ये सारी चीजें आपके दिन का वाइब है। कुंभ राशि, लगातार की गई मेहनत रंग जरूर लाएगी। अपने डेली रूटीन को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए और प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा हाई रखिए, क्योंकि आपकी ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट है और हार्डवर्क है, ये बहुत जल्द रंग लाने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी सो गुड फॉर यू गाइज और आपकी करियर के लिए भी। और मुझे लगता है कि आपको इसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने दिन में कोई एक प्रोडक्टिव काम, ये मैं सिर्फ कुंभ राशि वालों को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आप सब लोगों को बोल रही हूँ, मेक योर डे अ लिटिल प्रोडक्टिव देन यस्टरडे। तो मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा बदलाव भी नजर आएंगे, फिर चाहे वो एक्सरसाइज में हो, काम पे हो या घर पे हो, थोड़ा थोड़ा काम अपने दिन का जरूर बढ़ाइए और मुझे लगता है इसी के साथ आप अपने आप को बदलता हुआ भी देखेंगे। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस, लेकिन आफ्टर दिस।

back, darling, on Radio Nara Horoscope Rapid Fire, and this is your host Amrita. Let's talk about Meen Rashi, yani Zodiac series ki aakhri rashi, Pisces. खुशियों भरा दिन है और मूड भी काफी अपलिफ्ट रहेगा. मीन राशि, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कब से, वो अब आपके पास आ रही है. अपनी क्रिएटिव आइडियाज खुलकर सबके सामने रखिए और जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे आज, वो जरूर कम्प्लीटली पूरा होगा और आप इससे बहुत ज्यादा खुश होने वाले. सो ऑल द पाइसेस जस्ट हेड अप और आप मुझे बताइए कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ. रात में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA. I'm going to catch you tomorrow on this show on this time. Of course, आप सुनना ना भूले. गपशप के साथ आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी, ये सारी बातें बताती हूँ मैं. एंड इसी के साथ साथ अब वक्त हो गया कि मैं यहाँ से जाऊँ. आपको बाय बाय कह के मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा. मैं जाऊंगी नहीं तो अगला आएगा कैसे. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद रेडियो नारा.

घर से ऑफिस ट्रैवल वर्क और भाई काम का टेंशन, बट फिकर नॉट, आपके डे को रिलैक्सिंग बनाने के लिए मैं आपको ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार खबरें सुनाने वाली हूँ और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है। वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की, सो गेट रेडी। मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Tanish, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक्स। वेलहमर क्रैंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the NCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. बजाने वाला है, मिसमस करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morrisville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसास, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: कर गई चुल।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: आप सुन रहे हैं ना? Tata product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstone to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देसी, पक्का लोकल।

गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Daira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून संटॉप. पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है. वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us.
1: Achha,
0: at
1: suno, you're coming for Tanishq's Raleigh Trunk Show, na?
2: Kab?
1: Are, I told you last week. It's on October 17th and 18th at Courtyard by Marriott Raleigh Cary, 1008 Parkside Main Street, Cary, North Carolina 27519, from 11 a.m. to 7:30 p.m. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka desi, pakka local.
4: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 फॉर तेलुगु. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए. पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक. चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान. 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान. बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट. 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519. अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454. फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा.

तुम्हारे ब्लॉसम ब्लॉसम गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 49 AM, 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira FM. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है। कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई। Can't miss the night under the light, known as Mr. Saturday Night. Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart topping and topping. It is high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है। इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD 4 49 AM 99.9 FM HD 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson Ave. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: पुदड़ी का लाल।

0: ये तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन माइने के सीधा जाके दाई गुरु दाइने के सीधा जाके दाई माइने के सीधा जाके दाई गुरु दाइने के सीधा जाके दाई फिर थोड़ा आगे माइने के दाइने के सीधा जाके दाइने के दाई
0: हैं कुछ समझ में नहीं आया
1: फिर से सुन माइने के सीधा जाके दाई गुरु दाइने के सीधा जाके दाई फिर थोड़ा आगे माइने के दाइने के सीधा जाके दाइने के दाई
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye ga nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम 99.9 एफएम HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल ट्यून्स एंड टॉक कहा धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे पता इस धमाल की दावेदारी के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM LG 4 49 AM एंड 99.9 FM LG 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टू टॉक। ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415.0 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है। डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉर्थ विक्सबोरो स्पीडवे। एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव। फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग। पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉर्थ विक्सबोरो। इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक। Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Niagara, pakka deshi, pakka local.

ये ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर द 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है। हूं आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है। द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द कोर्स जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट। This particular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendor their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: Gaana. आप एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM and 99.9 FM LG34 Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल्स एंड डॉग्स.
1: Well, हमारा ट्रायंगल भी स्टेपिंग इनटू द क्राफ्ट समर इन सी ग्रूव सेलिब्रेट होने वाला है. Each weekend in July, Potter and Studios will have several events taking place for the great experience in Sea Grove area. From clean opening demonstration and some hands-on experience in play, we hope you will plan your visit and first-hand look at the process of making pottery. Some pottery studios may require a reservation to be included in the activities, so you will need to work directly with each site individually. We look forward to visit to a Sea Grove. मजा आने वाला है. जिनको सच में इंटरेस्ट है पॉटरी में जरूर विजिट कीजिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.
2: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा. कितना पोटेंशियल है तुझ में. क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

सुपरस्टार देसी का माहौल गाना था ना, एक नंबर। मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका, और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड डॉग। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉर्निंग।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1400

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: यार दिलजीत दोसांझ की नेशनैलिटी पे बात तो आ ही जाती है, बिकॉज कई बार उनकी हर चीजें भी ऐसी अलाइन होती हैं कि शक पैदा हो जाता है. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा, एंड मिका सिंह हैज क्वेश्चन्ड दिलजीत दोसांझ ओवर व्हाट ही प्रिजर्व्स एज लिमिटेड प्रमोशन ऑफ हिज बॉलीवुड फिल्म्स, पर्टिकुलरली बॉर्डर 2. व्हाइल प्रेजिंग दिलजीत फॉर टेकिंग पंजाबी म्यूजिक टू अ ग्लोबल ऑडियंस, मिका सेड ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द सिंगर एक्टर्स लैक ऑफ पोस्ट एंड पब्लिक मेंशंस अराउंड द वॉर ड्रामा एंड हिज अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सनी देओल. स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ, मिका सेड, आई कुड बी रॉन्ग बट आई फील दैट व्हेन बॉर्डर 2 केम आउट, दिलजीत पाजी डिड नॉट प्रमोट इट इवन 1%. ही डिड didn't even thank Sunny Paji 1%. I have never seen Diljit say it is a big thing that my film with Sunny Deol is coming. He never spoke about Border 2 when the film came out, and even afterwards, I didn't see him post about it. Main Vaapis Aaunga was also released, but he did not put up any story, any post. He made only one post about his film in which there was a Pakistani artist. However, Diljit did promote Border 2, sharing his first look in December 2025 and participating in the film's promotional campaign. He also later posted behind the scene videos and other content related to the film. So I think it's all about mindset and ki kya hai kya nahi hai. Baaki to filhal aap suniye aane wale gaane.
1: Main W Huigund Interpol se. Jo sabse ganda phogdi khelega wahi killer hoga. Aao phogdi dance kare.
2: Poo bhai poo, phogdi poo. You like me and I like you too. Poo bhai poo, phogdi poo. You like me and I like you too. Poo bhai poo, phogdi poo. You like

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ज्वेलरी शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency Naira. And you know what? Rally Trunk Show आ रहा है 17th और 18th of October को courted by Marriott Rally Cary में सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक। और सबसे खास बात, यहाँ आप enjoy कर सकते हैं gold और diamond jewelry की value पर making charges में up to 25% off। तो अपनी favorite jewelry choose कीजिए और इस special offer का फायदा उठाइए। Marked dates 17th and 18th of October courted by Marriott Rally Cary, Rally Trunk Show, because every occasion deserves a little more sparkle. And now you enjoy all the upcoming songs only on Naira.
1: Radio Naira par bajega sirf best hits. Aap sun rahe hain Naira 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. Pakka desi, pakka local.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौको, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: Mira 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9. Dial up, ekho jao. Pakka Desi.
2: Hello, hello, hello, people. Pranam, namaste, adab. Just a call came to and a very, very warm hello to each and every one of you. आप गई मैं प्राची या के हेलो ब्रैक्सू आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो नायरा पे 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम ऑफ 4090 एएम पर. हाँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा हर बार की तरह डिफरेंट है. एक्चुअली टॉपिक से ज़्यादा आज की बात एक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जिसे बहुत सारे लोग समझते हैं लेकिन उसे उसके बारे में खुल के बातें नहीं करते. आपने कभी नोटिस नहीं किया या किया है शायद, आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ लोगों को किसी की एक छोटी सी बात भी बहुत गहराई तक छू जाती है. किसी का टोन थोड़ा बदल गया, किसी ने पहले जैसे बात नहीं की, किसी का रिप्लाई थोड़ा ड्राई था. ओके, बस फुल स्टॉप के साथ, है ना, इतना सा आंसर. ओके, किसी ने अचानक डिस्टेंस बना लिया और हमारा माइंड तुरंत सवाल बनाना शुरू कर देता है. क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उनकी फीलिंग्स बदल गई है? और रात के 2 बजे हम व्हाट्सएप खोल के वो चैट दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे होते हैं, हर वर्ड का मतलब ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कोई एग्जाम पेपर चेक कर रहे हैं. और सबसे मज़ेदार या कहना चाहिए सबसे दुखदायी बात, कभी कभी सामने वाले को पता भी नहीं होता है कि उनके एक सेंटेंस ने हमारे अंदर कितना बड़ा इमोशनल तूफान खड़ा कर दिया है. वो सो रहे होते चैन से और हम उनकी एक लाइन के साथ जाग रहे होते हैं. अगर आप ऐसे इंसान हैं तो शायद आज की बात आपके लिए है. और अगर आप ऐसे हैं और ऐसे नहीं हैं, तो प्लीज़ आज ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपके पास आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है. शायद आपकी बहन, आपका दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर. आज के बाद शायद आप उन्हें थोड़ा बेटर समझेंगे. सो आज हम 2 घंटे साथ में बात करेंगे सेंसिटिविटी क्या है, हम हर्ट क्यों होते हैं, लोग बदलते हैं तो हम अपनी वैल्यू क्यों घटा देते हैं, और बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं बिना दिल को पत्थर बनाए. तो चलिए आज थोड़ा खुद को सुनते हैं, है ना. उन्होंने तो बस एक बात कही और आगे बढ़ गए. उन्होंने तो बस एक बात कही और आगे बढ़ गए. हम उस एक बात के साथ पूरी रात जागते रह गए. वाह वाह वाह वाह, क्या बात. तो अब आज है ना स्पेशल टॉपिक, तो हमारा सेंसिटिव है, पर हम सॉन्ग्स बड़े मज़ेदार लगाएंगे. आज हम एक काम करते हैं, सोनू निगम स्पेशल करते हैं. सारे सॉन्ग्स हम सोनू निगम जी के लगाते हैं, ठीक है. तो ये चलिए सुनते हैं पहला सॉन्ग.

back to Sunsara Radio Night on 99.9 FM, HD4, 101.9 FM, 4090 AM. मैं हूँ प्राची, और जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है

साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन एरॉन करके थे, ने पर बहुत काम किया इन्होंने इस पर. उन्होंने एक टर्म दिया था, हाईली सेंसिटिव पर्सन, या उसका एक शॉर्ट फॉर्म था HSP. उनकी रिसर्च कहती है कि लगभग 15 से 20% लोग नेचुरली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब हर 5-6 लोगों में से एक. और ये कोई बीमारी नहीं है फॉर श्योर, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है. जैसे कोई लंबा होता है, कोई छोटा. उन्होंने ये ट्रेट इंसानों के अलावा 100 से ज़्यादा जानवरों की प्रजातियों में भी देखा है. मतलब नेचर ने जानबूझकर कुछ लोगों को ज़्यादा नोटिस, मतलब हैशटैग नोटिस करने वाला बनाया है. और डॉक्टर रेनॉन ने सेंसिटिव लोगों की 4 खासियतें बताई है. मैं इन्हें अपनी भाषा में आपको बताती हूँ, सिंपल लैंग्वेज. एक, आप चीज़ों को गहराई से प्रोसेस करते हैं, एक बात को अंदर तक सोचते हैं, ये ओवरथिंकिंग नहीं है. सेकंड, आप जल्दी थक जाते हैं, भीड़ शोर बहुत सारी बातें सब कुछ ज़्यादा हो जाता है. थर्ड, आप इमोशंस को गहराई से फील करते हैं, अपनी भी और दूसरों के भी. यस. और चौथा, आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, टोन, चेहरा, उसकी एक्सप्रेशन, एक हल्की सी चुप्पी भी. कुछ फैमिलियर लगा ना? हाँ, सेंसिटिविटी का मतलब हो सकता है कि आप किसी के वर्ड्स के साथ साथ उनका टोन भी नोटिस करते हैं. आप किसी के आई एम फाइन में भी महसूस कर लेते हैं कि शायद वो एक्चुअली फाइन नहीं है. आपको छोटी छोटी बातें याद रहती है. किसी ने सालों पहले कुछ अच्छा कहा था, आपको याद है. किसी ने बहुत कैजुअली कुछ ऐसे ही कह दिया जो हर्ट कर गया, वो भी याद है. आप रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, आप अटैच होते, आप केयर करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं. और शायद इसी वजह से जब जब जब कुछ अच्छा होता है ना, तो आप उससे भी बहुत गहराई से फील करते हैं. और जब कुछ हर्ट करता है, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा गहराई से लगता है. दैट इज सेंसिटिविटी. ये वो इंसान है जो पार्टी में सबसे पहले नोटिस करता है कि कोई अकेला खड़ा है, जो दोस्त की आवाज़ से समझ जाता है कि आज कुछ ठीक नहीं है इसके साथ, जो अपनी माँ के चेहरे से बता देता है कि उनकी आज थकान है. ये सुपर पावर है एक्चुअली. बस इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट. सो लोग कहते हैं तुम हर बात दिल पे लेती हो. लोग कहते हैं तुम हर बात दिल पे लेती हो, कैसे समझाऊं, दिल ही तो है जहां मैं रहती हूं. चलिए, एंजॉय दिस सॉन्ग, आई विल बी बैक.

Welcome back to Sun's Raw Radio, Nairobi 99.9 FM, HD4 and 1.9 FM, 4090 AM. मैं हूँ प्राची. Yes, कभी कभी हमारा ब्रेन उस फीलिंग के ऊपर अपनी कहानी बना देता है ना. किसी ने रिप्लाई नहीं किया और ब्रेन कहता है दे डोंट केयर एनी मोर. किसी का टोन बदल गया, दे आर एंग्री विद मी, राइट. किसी ने हमें इंक्लूड नहीं किया, मे बी आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू दैम एनी मोर. और यही सेंसिटिविटी धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल सकती है. साइकोलॉजी में इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. सो मतलब सोच के टेढ़े रास्ते. ये कॉन्सेप्ट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एरॉन बैक ने दिया था, जिन्हें कॉग्निटिव थेरेपी का जन्मदाता माना जाता है. तीन डिस्टॉर्शंस आज के टॉपिक से बिल्कुल जुड़े हैं. पहला, माइंड रीडिंग. हम मान लेते हैं कि हमें पता है सामने वाला क्या सोच रहा है. उसने कुछ कहा नहीं, पर मुझे पता है वो मुझसे नाराज है. सच में पता है क्या या अंदाजा लगाए. दूसरा, पर्सनलाइजेशन. हर चीज को अपने ऊपर ले लेना. बॉस का मूड खराब है तो जरूर मैंने कुछ किया होगा. हो सकता है उनकी सुबह ट्रैफिक में खराब हो गई हो, पर नहीं, हमने हम पर ले लिया. थर्ड है, जैसे कि एक छोटी सी बात को सबसे पूरा नतीजा बना देना. एक ड्राई रिप्लाई और दिमाग में दोस्ती खत्म. और एक और चीज है जिसे साइकोलॉजी में रिजेक्शन सेंसिटिविटी एक टर्म दिया है, कहते हैं उसको. कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर डाउनी, उन्होंने इस पर रिसर्च की. और कुछ लोग रिजेक्शन को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा जल्दी देख लेते हैं और उस पर ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, अक्सर पुराने अनुभवों की वजह से में भी. अब ज़रा इमेजिन कीजिए, किसी दोस्त ने आज आपसे वैसे बात नहीं की जैसे नॉर्मली करता है, बस इतना हुआ. लेकिन उसके बाद आपका माइंड पीछे 10 कन्वर्सेशंस रिप्ले करने लगता है ना, उस दिन भी ऐसा हुआ था और उस दिन उसने ये कहा था. शायद तब से ही प्रॉब्लम थी. और फिर हम एक छोटी सी घटना को पूरे रिश्ते की कहानी बना देते, सब डॉट्स ज्वाइन करने लगते हैं. ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है. मुझे हर्ट फील हुआ, ये आपकी फीलिंग है ना. लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे हर्ट करना चाहा, यह आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है. और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. फीलिंग रियल हो सकती है, लेकिन फीलिंग से निकाला गया कंक्लूजन हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है, और गलत हो ये भी जरूरी नहीं है. सो उसने तो बस चुप्पी रखी थी, कुछ कहा भी नहीं. मैंने उस चुप्पी में पूरी किताब लिख दी. Enjoy this next beautiful two songs. I'll be back soon.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: Your talent brought you this far. Your dream.
1: Welcome back to Sunsara Radio Nairobi 99.9 FM HD4.1.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची और ये जो सॉन्ग्स थे वो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और वो स्पेशली डेडिकेटेड थे मोहम्मद रूबी प्रिंशु एंड भाग्या फ्रॉम अनिल. यस सो यस. तो जब अंदर तूफान उठे तो करे क्या. पहले एक बात क्लियर कर दूं, इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ फील ही ना करें. इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है मैं जो फील कर रही हूँ उसे एक्नॉलेज करूँ लेकिन तुरंत उसे फैक्ट मानकर रिएक्ट ना करूँ. बस थोड़ा सा पॉज, फील इट, नेम इट, देन अंडरस्टैंड इट. और ये सिर्फ एक अच्छी लाइन है नहीं है ना, इसके पीछे साइंस है. 2007 में UCLA में ही यहाँ के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैथ्यू ने एक स्टडी की. लोगों को गुस्से या डर वाले चेहरों की तस्वीरें दिखाई. जब लोगों ने उस फीलिंग को नाम दिया जैसे ये गुस्सा है या ये डर है तो ब्रेन का अमिग्डाला जो हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है उसकी एक्टिविटी कम हो गई. मतलब सिर्फ फीलिंग को नाम देने से ही ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है. सो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सैन सेगल ने इसके लिए एक प्यारा सा फ्रेज यूज करा था. उन्होंने कहा था नेम इट टू टेम इट, नाम दो और उसे काबू में लाओ. तो अगली बार जब अंदर कुछ हो जैसे मैं पागल हो रही हूं कहने के बजाय खुद से कहिए मुझे अभी इग्नोर्ड फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मुझे हर्ट हुआ है. देखा, फीलिंग वही है लेकिन अब आप फीलिंग के अंदर डूब नहीं रहे, आप उसे बाहर से देख रहे हैं. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्टे टेलर ने कहा था कि एक इमोशन का केमिकल वेव शरीर में कुछ ही देर लगभग 90 सेकंड्स तक रहता है. अगर वो उसे ज़्यादा टिक रहा है तो शायद हम उस पर बार बार सोच के उसे खुद जिंदा रख रहे हैं. तो अगली बार एक लंबी सांस लीजिए, 90 सेकंड बस इतना, फिर डिसाइड कीजिए, फिर देखना शायद काम बन जाए. आप जो सोच रहे हो शायद वो आपको सोचना ही ना पड़े, है ना.
2: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
3: कब?
2: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
3: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
2: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

0: मैं हूं प्राची। शायद आज की पूरी बातचीत की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लोगों के लहजे में बदलने से अपनी वैल्यू मत बदलो, क्योंकि हम सेंसिटिव लोग के बार अनजाने में अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के बिहेवियर से नापने लगते हैं। जब कोई बहुत प्यार से बात करते हैं, हमें लगता है आई मैटर। जब कोई दूर हो जाए, मे बी आई डोंट मैटर एनी मोर। जब कोई तारीफ करें, हम अच्छा फील करते हैं, है ना। जब कोई क्रिटिसाइज करे, हम खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनिफर क्रॉकर ने इस पर रिसर्च की और इसे नाम दिया था कंटिंजेंट सेल्फ वर्थ। मतलब ऐसी सेल्फ वर्थ जो किसी शर्त पर टिकी हो, दूसरों की अप्रूवल पर, उनकी तारीफ पर, उनके मूड पर। और उनकी उनकी रिसर्च कहती है कि जब हमारी वैल्यू ऐसी ऐसी मतलब ऐसी शर्तों पर टिकी होती है, तो हमारा मूड भी उस शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। अब सोचिए, अगर आपकी वैल्यू हर इंसान के बिहेवियर के साथ बदलती रहेगी, तो आपकी अपनी वैल्यू आखिर है कहाँ? आपकी वर्थ किसी के मूड की प्रॉपर्टी नहीं है। और एक और रिसर्च वाली बात, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन करके, नहीं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सिंपल भाषा में जब कहूँ तो, जब दूसरा कोई रूढ़ हो, तो हम सोचते हैं वो ऐसा ही इंसान है या फिर वो मुझसे नाराज है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शायद उनके साथ कुछ चल रहा हो। हो सकता है घर में टेंशन हो, ऑफिस में डांट पड़ी हो, तबीयत ठीक ना हो, नींद पूरी ना हुई हो। अक्सर किसी का टोन उनकी अपनी कहानी होता है, आपकी नहीं। किसी का आज अच्छा मूड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम अच्छे हैं। किसी का टोन बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हैं। बड़ी देर से सीखी हूं, पर सही कह रही हूं मैं। उनके लहजे में ठंडक थी, तो मैं क्यों बर्फ हो जाऊं? मेरी कीमत उनके मूड की मोहताज क्यों हो जाए? है ना, यही है। अब थोड़ा सा मूड अप करते हुए आई प्ले ब्यूटीफुल सॉन्ग, मस्त वाला सॉन्ग। पेट
1: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें, नए साल पर सब कुछ नया, सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Welcome back to Sunset Radio, right up in 99.9 FM, HD4, 101.9 FM, or 4090 AM. मैं हूँ प्राची. So, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि अचानक लगता है, maybe everybody is against me, है ना? ग्रुप चैट में सब चुप, फैमिली फंक्शन में कुछ लोग अलग से बात कर रहे हैं, ऑफिस में एक मीटिंग जिसमें आपको बुलाया नहीं गया, और दिमाग कहता है सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं. आप एक बहुत मज़ेदार रिसर्च सुनाती हूँ. कॉर्नल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस ने 2000 में एक एक्सपेरिमेंट किया था. स्टूडेंट्स का को एक ऐसी टी शर्ट पहनाई गई जिसमें एक सिंगर की फोटो थी. उस जमाने के स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ी एम्बेरसिंग थी वैसी. फिर उन्हें एक कमरे में भेजा गया जहां बाकी स्टूडेंट्स बैठे थे. बाद में उनसे पूछा गया, आपको क्या लगता है कितने लोगों ने आपकी टी शर्ट नोटिस की? उन्होंने कहा, लगभग आधे लोगों ने. असल में कितनों ने नोटिस किया? सिर्फ लगभग एक 1/4 पीपल ने. ओके, इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट. हमें लगता है कि दुनिया की स्पॉटलाइट हम पर है, सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सच यह है ज़्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनके पास हमारे बारे में सोचने की टाइम ही नहीं है. कितना रिलीफ है ना ये. और जब सच में कुछ लोग आपके बारे में गलत सोच भी रहे हो, तो सेंसिटिव इंसान का इंस्टिंक्ट होता है एक्सप्लेन करो. यस, एक्सप्लेन करो, अपनी साइड प्रूव करो, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, हर इंसान को कन्विंस करो. नहीं, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी करके. लेकिन शायद हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं, कभी कभी पॉज इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. हर बात का उसी पल जवाब देना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन को करेक्ट करना जरूरी नहीं, हर इंसान को अपनी साइड समझाना जरूरी नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत रिजॉल्व करना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है. कभी कभी थोड़ा पीछे हटकर बस इतना देखना होता है, क्या मुझे सच में अपनी बात क्लेरिफाई करनी है, या मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैं बुरी नहीं हूं. इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है. हर अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करते करते थक गई, फिर समझी मेरा दिल ही मेरी सबसे सच्ची गवाही है. है ना? ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग एंजॉय कीजिए. आई विल बी बैक.
1: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर. सब कुछ नया, सिर्फ रेडियो नायरा पर.

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 41490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: वेलकम बैक टू सुनसरा रेडियो 99.9 FM SD 41490 FM और 1490 AM। मैं हूँ प्राची। अब एक ईमानदार बात, आज की बातचीत का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सही हैं और बाकी सब गलत। कभी कभी शायद हमसे भी गलती होती है और वहाँ अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अगर गलती है तो एक्सेप्ट करो, सॉरी कहना है तो कहो, अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करनी है तो करो, लेकिन हर सिचुएशन में खुद को गिल्टी बनाना, दैट इज़ नॉट इमोशनल मैच्योरिटी। और यहाँ भी मैं एक आपको रिसर्चर डॉक्टर ब्राउन की एक बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने गिल्ट और शेम में एक बहुत खूबसूरत फर्क बताया। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, और शेम कहता है मैं ही गलत हूँ। सुनने में छोटा सा फर्क है लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा। गिल्ट हमें बेहतर बनाने की तरफ ले जाता है। मैंने गलत किया है, मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं सुधार करूँगी। शेम हमें अंदर से तोड़ता है, मैं ही बुरी हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है। सो डॉक्टर ब्राउन की रिसर्च कहती है कि गिल्ट अक्सर इंसान को सुधार की तरफ ले जाता है, शेम अक्सर इंसान को छुपने, डिफेंसिव होने या खुद को सजा देने की तरफ ले जाता है। तो अगली बार जब कोई गलती हो खुद से कहिए मैं एक गलती की है, मानती हूँ, ठीक है, मैं पर गलत नहीं हूँ। और जब गलती आपकी नहीं थी तो सॉरी सिर्फ इसलिए मत बोलिए कि माहौल ठीक हो जाए। जो बोझ आपका नहीं है उसे अपने कंधों पर मत उठाइए। हम सेंसिटिव लोग सॉरी बहुत जल्दी बोल देते हैं। कभी कभी वो सॉरी नहीं होता, वो डर होता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। गलती थी तो झुक गई, ये मेरा बड़प्पन था, पर हर बार झुकना ये मेरा डर था, मेरा मन नहीं। समझे? एंजॉय दिस।

0: Oh, sorry. Welcome back to Sincera Radio 99.9 FM HD4 101.9 FM और 49 AM. मैं हूँ प्राची. और यही बाउंड्रीज आती है. हम अक्सर बाउंड्री को गलत समझते हैं. बाउंड्री का मतलब ये नहीं अब मुझे किसी की परवाह नहीं. बाउंड्री का मतलब ये भी नहीं मैं बदला लूंगी. और डेफिनेटली बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे पड़ जाए. एक्चुअली बाउंड्रीज हाउ अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन प्रोटेक्ट्स देयर सॉफ्टनेस. मेरे जैसे थेरेपिस्ट और राइटर हेमफील्ड जी की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है. वो कहते हैं कि बाउंड्री वो दूरी है जहां आप सामने वाले को भी प्यार कर सके और खुद को भी. कितनी खूबसूरत सोच है ना. बाउंड्री रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है. हाँ, सो आप सेंसिटिव हैं, ठीक है, आप केयरिंग हैं, बहुत अच्छी बात है. आप लोगों को गहराइयां से प्यार करते हैं, ब्यूटीफुल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को आपके इमोशनल स्पेस तक अनलिमिटेड एक्सेस मिले. आप किसी को प्यार कर सकते हैं और फिर भी उनसे थोड़ी दूरी रख सकते हैं. आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी पहले जैसी नजदीकी वापस ना लाए. आप किसी की फीलिंग्स समझ सकते हैं और फिर भी उनका बिहेवियर एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं. अंडरस्टैंडिंग समवन डज नॉट मीन एक्सक्यूजिंग एवरीथिंग दे डू, राइट. सो बाउंड्री कैसी लगती है? कुछ छोटे एग्जाम्पल्स, जैसे मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती, कल बात करते हैं. मुझे ये टोन ठीक नहीं लगता, मैं इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं हूं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. सो आई गेस चिल्लाना बहस करना नहीं, बस साफ शांत और प्यार से अपनी बात पुट ऑन करना. और ये लाइन शायद याद रखने लायक है कि दिल नरम रखिए लेकिन बाउंड्रीज जरूर जरूर से मजबूत रखिए. क्योंकि दुनिया आपको सेंसिटिव होने की वजह से कभी कभी कमजोर समझ सकती है, लेकिन सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं है. अनप्रोटेक्टेड सेंसिटिविटी कैन एग्जॉस्ट यू. इसलिए अपना दिल बदलने की जरूरत नहीं, बस ये सीखना जरूरी है कि किसके सामने कितना बोलना है. समझे? दरवाजा बंद नहीं किया, बस एक कुंडी लगा दी है. जो अपने थे उन्हें दस्तक देना ही आ गया. तो ये सॉन्ग मेरे फ्रेंड्स के लिए.
1: जाने नहीं

0: मंजर हो।
1: ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग को मेरा ऐसा टाइटल सॉन्ग बना देना चाहिए मेरे शो का। वेलकम बैक टू सुनसरा रेडियो नायर पे 99.9 FM, HD4 101.9 FM और 49 AM। मैं हूँ प्राची। शायद शायद हमें सेंसिटिविटी से छुटकारा नहीं चाहिए, हमें बस सेंसिटिविटी के साथ जीना सीखना है।

हमेशा इनसेंसिटिव नहीं बनना, हमें ये नहीं सीखना अब मुझे किसी की परवाह ही नहीं, ना हमें केयर करना है, हमें प्यार करना है, हमें लोगों की फीलिंग्स समझनी है, हमें अच्छे रिश्ते रखने हैं, बस साथ में खुद को भी उस रिश्ते में इंक्लूड करना है, हमें अपनी केयर करनी है मतलब, क्योंकि हर बार हम दूसरों की फीलिंग्स का इतना ध्यान रखते हैं कि अपनी फीलिंग्स को ही लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं। उसे बुरा लगेगा, वो क्या सोचेगा, शायद उसे मेरी बात पसंद नहीं आएगी, शायद मैं एक्सप्लेन कर दूं, और धीरे धीरे हम खुद से दूर होने लगते हैं। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ ने इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर रिसर्च की है, सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के साथ वही नरमी जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रखते हैं। उनके हिसाब से इसके तीन हिस्से हैं, एक खुद से प्यार से बात करना खुद को डांटने के बजाय, दूसरा ये याद रखना कि आप अकेले नहीं हो, हर इंसान कभी ना कभी हर्ट होता है, ये इंसान होने का एक हिस्सा है, पार्ट है, तीसरा अपनी फीलिंग्स को देखना, ना उसे दबाना ना उसमें डूब जाना। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको फोन करे और कहे यार किसी ने मुझसे रूड बात की, मुझे बहुत बुरा लगा, तो आप क्या कहेंगे? शायद अरे तो इतनी अच्छी है, उसका मूड खराब होगा, तो खुद को ब्लेम मत कर। अब वही बात खुद से कब कही थी आखिरी बार, बताओ जरा। तो शायद गोल ये नहीं है डोंट बी सेंसिटिव, शायद गोल ये है बी सेंसिटिव बट डोंट अबैंडन योरसेल्फ। और एक जरूरी बात, अगर कभी ये हर्ट इतना भारी हो जाए कि रोज की जिंदगी पर असर डाले, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना भी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे डियर जिंदगी में आलिया ने किया था। मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है ना? आज की संसरा की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर चीज का जवाब रिएक्शन नहीं होता, कभी जवाब कन्वर्सेशन है, कभी जवाब एपोलॉजी एंड कभी जवाब क्लेरिफिकेशन है, और कभी जवाब सिर्फ साइलेंस और डिस्टेंस है, नॉट पनिशमेंट, नॉट रिवेंज, जस्ट पीस। क्योंकि जब आप हर्ट होते हैं ना, तो नेचुरली आपका एक हिस्सा चाहता है जिस तरह मुझे हर्ट किया गया सामने वाला भी वैसा ही फील करे, है ना? तो एक ही रिसर्च है उनकी, फॉरगिवनेस है ना, यानी माफ़ी पर रिसर्च की किसी ने, उनकी रिसर्च की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, और माफ़ करने का मतलब ये भी नहीं कि आपको उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। माफ़ी सामने वाले के लिए नहीं, माफ़ी अपने लिए है, ताकि वो दर्द आपके दिल में किराया फ्री ना रहे। और उनकी स्टडीज में जिन लोगों ने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की, उनमें स्ट्रेस और गुस्सा कम होता देखा गया। तो शायद हीलिंग वहां शुरू होती है जहां हम ये डिसाइड करते हैं मुझे सामने वाले को वही दर्द महसूस करवा कर अपना दर्द छोटा नहीं करना है, मैं अपने दिल से दिल लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपनी डिग्निटी लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपनी सेल्फ वर्थ लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि रिवेंज आपको उसकी कहानी से बांध के रखता है, लेकिन लेटिंग गो आपको वापस अपने पास ले आता है। साहिल उधवानी साहब ने भी तो एक यही कहा था अपने एक मशहूर गाने में कि कुछ रिश्तों को एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ही बेहतर है। और इसी ख्याल के साथ आप ये गाने सुनिए और मैं आती हूँ फिर से।

Welcome back to Sunsara Radio 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM. मैं हूं प्राची और बस ऐसे ही हम आ गए हैं आज के सनसरा के आखिरी पल में. और अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसे लगता है हाँ मैं भी हर छोटी चीज दिल पर ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, तो प्लीज खुद को कमजोर मत समझिए. आपको शायद बस थोड़ा सा इमोशनल स्पेस चाहिए. और अगर आज किसी के बिहेवियर ने आपको हर्ट किया है तो अपनी फीलिंग्स को इनवैलिडेट मत कीजिए, लेकिन साथ ही अपनी पूरी सेल्फ वर्थ उस एक इंसिडेंट के हवाले भी मत कीजिए. किसी का बदलता हुआ टोन आपकी पहचान नहीं है, किसी की दूरी आपकी वर्थ का मेजरमेंट नहीं है, किसी की नाराजगी आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, और किसी का आपको गलत समझ लेना आपको गलत इंसान नहीं बना देता. तो आज अगर आप भी थोड़े सेंसिटिव हैं, थोड़े इमोशनल हैं, थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं, तो शायद आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है. बस अगली बार जब किसी का टोन बदले तो तुरंत खुद को मत बदलना. जब कोई दूर जाए तो तुरंत अपनी वैल्यू मत घटाना. जब कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे तो हर बार खुद को कोर्टरूम में खड़ा मत करना, अपनी इनोसेंस प्रूव मत करना. और जब इमोशंस बहुत लाउड हो जाए तो थोड़ी देर के लिए दुनिया को म्यूट करके खुद को सुनना, क्योंकि शायद आपको हमेशा दूसरों से रीअश्योरेंस नहीं चाहिए. कभी कभी आपको खुद से ये कहने की जरूरत होती है, आई नो माई हार्ट, आई नो माई इंटेंशंस, आई नो माई वर्थ, और हर किसी का ओपिनियन मुझे डिफाइन नहीं करता. दिल नरम रखिए, बस उसकी चाबी हर किसी को मत दीजिए, और अपनी वैल्यू किसी के बदलते हुए लहजे के साथ कभी मत बदलिए. थोड़ा सा खुद के लिए रुकिए, थोड़ा सा खुद को समझिए, और शायद आज किसी और को नहीं बस जरा खुद को सुनिए. और इसी एहसास के साथ एक गाना जो जिंदगी से एक बहुत की पहली जो मुस्कुरा के देखना सिखाते हैं. और हाँ, उससे पहले मैं यहां से जाऊं, मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक, एक नए एहसास और नए सफर के साथ. तब तक के लिए याद रखिए, आप बोलो जरा मैं हमेशा सुन रही हूँ. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल 2.5 hours विद मीस ऑन सुनजरा. टुडे वी टॉक्ड अबाउट बीइंग सेंसिटिव, गेटिंग हर्ट एंड होल्डिंग ऑन टू योर सेल्फ वर्थ एंड बाउंड्रीज. बी जेंटल विद योर हार्ट एंड बी जस्ट एज जेंटल विद योर सेल्फ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप बोलो जरा मैं हमेशा सुन रही हूँ.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: अच्छा सुनो, you're coming for Tanishq's Raleigh trunk show, na?
4: कब?
3: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैली कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
4: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
3: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
5: आप सुन रहे हैं ना, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
6: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

गुड इवनिंग जो अभी आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि कैसे चल रही है आपकी आज की शाम। शाम तो काफ़ी खूबसूरत चल रही है और मौसम भी देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी मज़ेदार मौसम है। इस मज़ेदार मौसम में एक कप अदरक की चाय या फिर अच्छी ऐसी झनझनाहट भरी कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा एंड इस शाम के इस माहौल में एक अच्छा सा गाना सुनना तो बनता है। सुनाने जा रहा हूँ आपको इस शाम का यह पहला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: पुतनी का भागने न पाए, बुधनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, बुधनी का भागने न पाए,
2: पुतनी का भागने न पाए, बुधनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, बुधनी का भागने न पाए, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल।

0: कुछ समझ में नहीं आया। फिर से सुन।
1: दाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, थोड़ा आगे दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं के दाएं के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

अपन निर्वाणा नाइट्स एंजॉय किया आपने ये गाना। गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। और अब वक्त हो चुका है कि हम लोकल खबरों के बारे में जान ले। तो सबसे पहली खबर और गर्व की खबर आ रही है, एंड ये खबर ये है कि रैली को नॉर्थ कैरोलिना में रहने के लिए नंबर वन और दरम को दूसरा सबसे बेहतरीन शहर चुना गया है। तो तालियां तो बनती है यार, मतलब कितना अच्छा है, रैली को पहला एंड दरम को दूसरा नंबर दिया है। एंड इट्स नथिंग इज लाइक दैट, लाइक हमने प्राउड फील करना चाहिए कि हम रैली में रहते हैं। एंड कितनी ये गर्व की बात है यार।

मतलब इतने बड़े एरिया में रैली को रहने के लिए नंबर वन प्लेस चुना गया है, तो वाकई में ये काबिले तारीफ है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुश खबर है। इस खुश खबर पे एक अच्छा गाना तो बनता है। सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला ही गाना।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

गाना सुन के मजा ही आ गया यार। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडिता नाइट सैंड। खेल के मैदान से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। हमारे अपने कैरोलिना हरिकेन्स ने कमाल कर दिया है। स्टार गोलकीपर प्योत्र कोचेटकोव के साथ पूरे 2 साल का नया जो है एक्सटेंशन साइन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सीजन में हमारी टीम और मजबूत होने वाली है। चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार डालिया, मतलब रहने के लिए रैली जो है एक नंबर का शहर, दरम जो है वो 2 नंबर का शहर। उसके बाद खेल की दुनिया से, खेल के जगत से ये खबर आई है। सो प्राउड मोमेंट तो डेफिनेटली बनता है, गर्व की बात है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिता नाइट। सुनाने जा रहा हूँ इस खुशखबरी के साथ आपको एक बहुत अच्छा गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेल एंजॉय किया आपने, एक गाना गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। एंड दूसरी मज़ेदार खबर हमारे जगत से ये है कि आज धर्म के नाइट लाइफ हब अमेरिकन टोबैको कैंपस में मशहूर फुल स्टीम ब्रीवरी एक नया आउटलेट खोलने जा रहा है। एंड 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आज से इसका शानदार टेप रूम जो है लोगों के लिए खुल रहा है। तो मैं ये कह रहा था अगर फ्री हो तो शाम को आप यहाँ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ अ फुल स्ट्रीम ब्रेवरी, ये जो है काफ़ी मतलब फेमस नाम है। एंड यहाँ पे जो वाइब होती है ये अप टू द मार्क, हमेशा ही अप टू द मार्क होती है। तो लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबर है, मतलब आज का दिन मैं बताना चाहूँगा आपको। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंड हेल्थ सेक्टर से काफ़ी शानदार खबर आ रही है। यूएनसी हेल्थ ने हमारे कम्युनिटी के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दरम और कैरी में बंद रहे नए मेडिकल कैंपस को अब और बड़ा किया जा रहा है, क्या बात है। एंड जिसमें जो है वो 144 नए बेड्स और एक आलिशान 6 मंजिला मेडिकल ऑफिस बिल्डिंग को मंजूरी मिल गई है। यानी अब पूरे ट्रायंगल एरिया को भी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं मिलने वाली है, क्या बात है। मतलब कहते हैं ना कि जिस एरिया का, जिस देश का जो सिस्टम होता है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो अगर अच्छा होता है तो उन्हें सक्सेस माना जाता है। एंड ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कि इतना बड़ा हब हेल्थ केयर से रिलेटेड बनने जा रहा है, तो नथिंग इज़ लाइक दैट। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.